0: इससे सोचते रहते सहसाइन से मुझे रहते कि जिम्मी जी वैसे ऐसे कि तो नाइंस में निश्चय बस पेशे पर रखे और ये भी भारे के नहीं सेंस ते कल सोचो सुने के मिसे फिर दिशा में चल में सेंस
1: الله راضي وسم برهان الفاتحة مع الصلوات